0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं द आकाशवाणी पॉडकास्ट।
4: नमस्कार, प्रणाम, वेलकम टू येट अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ आकाशवाणी पॉडकास्ट्स। आवर टुडेज स्पेशल गेस्ट हैज फोरेड इनटू एंड रीच्ड द ज़ेनिथ ऑफ टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस, मीडिया एंड नाउ फिल्म सर्टिफिकेशन। इट इज माय एब्सोल्यूट ऑनर एंड प्रिविलेज टू वेलकम हिम, और राधा आई शुड से वेलकम हिम बैक टू द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी। ही हैज रिसीव्ड अ पद्मश्री फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली। Hence, I should call him Padmashri Shri Shashi Shekhar Vempati ji. Sir, welcome back to the studios of Akashvani.
5: Thank you. Namaskar. Very happy to be here back at Akashvani studios, where it all happens and where it all began, more importantly.
4: Absolutely.
5: So, very excited to see so many old colleagues and to be back here.
4: It's an honor to have you, sir. So you've worked across technology, governments, media, and now film certification. What core idea has guided your journey so far?
5: See, when I look back at the various twists and turns that I've had in my professional career over the decades, I think certain things stay with you, things that you picked up during your formative years. In my case, I will trace it back all the way to IIT Bombay, where the rigor that the IIT system puts you through in the 4 years, beyond the core engineering that you're learning, it actually prepares you for almost anything in life. So I think to be able to

0: अभियान। निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।